0: के घर वाले।
1: हेलो हाँ भाई, जगह पे पहुंच गया हूँ लेकिन मिट्टी से खड़े हुए आगे क्या, और वो तो पुलिस वाले दिन में खाली खड़े हुए, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। मैं ये काम करती हूँ पुलिस वाले की बनी है खाली में खड़े हुए।
2: 정상회담의 문제점에 대해서 항의했습니다. 근데 그때
3: 한반도 자위대 진출용인 악사 추진 즉각 중단하라. 중단하라.